0: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
1: CUNY Global Advisor Inc. आपके लिए लाए हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसमें गवर्नमेंट आपके पूरे स्टडी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है, साथ ही लिविंग एक्सपेंसेस के लिए नॉन रिफंडेबल ग्रांट भी देती है जो 15,000 से $50,000 सालाना तक हो सकती है। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, सिटीजन हैं या फिर प्रोटेक्टेड पर्सन हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इनकी ज्यादातर क्लाइंट्स की एज 40 साल या उससे ज्यादा है। आप घर के कम्फर्ट से 2 से 3 घंटे फुली ऑनलाइन इजी टू पास कोर्सेज करें और नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स और लिविंग एक्सपेंसेस के हकदार बने। इनकी फीस सिर्फ $299 है, वो भी ग्रांट मिलने के बाद, कोई कमीशन नहीं। मजीद मालूमात और असेसमेंट के लिए अभी कॉल कर लें 4372643175। इट्स 4372643175। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।
2: जी हाँ, 416-710-6777 पे आप कॉल कर लीजिए। शम्स रहमान साहब से रब्ता कीजिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है कैपिटल बैंकवेट हॉल जो ईद मेलों के हवाले से मशहूर है। शम्स भाई हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। शम्स साहब अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू,
2: बहुत शुक्रिया आपका। बताइए, मई आ गया और बस अब 3 हफ्ते बाकी हैं, कैसी तैयारियां हैं और क्या कुछ प्रेजेंट हो रहा है इस ईद इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल में?
3: जी बेटी साहब, आपको पता है कि इनाम घर का मिशन है स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना और जो भी टैलेंट है उसको प्रमोट करना, तो इसी को देखते हुए हमने इनाम घर के बाद ये नया सिलसिला शुरू किया है इनाम घर ईद फेस्टिवल का। तो मकसद हमारा वही है कि टैलेंट को प्रमोट करना और स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना। तो हमने अर्ली बर्ड रखा हुआ है। इस वक्त जो वेंडर हमें सुन रहे हैं उनके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आज तक उनको किसी ने नहीं दी होगी। वो जैसे ही हमारे साथ साइन अप करेंगे, आजकल डिस्काउंटेड प्राइसेस चल रही हैं, हम उनका वीडियो प्रोमो शूट करेंगे टोरंटो 360 टीवी में और उसके बाद हम सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर देंगे और इंशाल्लाह ईद आने से पहले ये हमारा वादा है कि हम उस वेंडर को वायरल कर देंगे और वो मशहूर हो जाएंगे, वो और उनका बिजनेस जो भी है दे विल गेट फेमस।
2: ऑलराइट,
3: तो जल्दी से हमसे रابطہ करें क्योंकि लिमिटेड स्टॉल्स हैं, आपको पता है।
2: 416-710-6777 पे आप रابطہ कर लीजिए। इसके अलावा कुछ गोल्ड प्राइजेस और गिफ्ट्स वगैरह भी और इनाम घर भी एवरी डे हुआ करेगा?
3: जी बिल्कुल, एवरी डे इनाम घर है। पहले दिन हमारा फैशन शो है, उसमें मॉडल्स हमसे रابطہ कर सकती हैं, मेल फीमेल मॉडल दोनों रابطہ कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट डे हमारा सिंगिंग कंपटीशन है और थर्ड डे पे सीनियर्स कंपटीशन है, फोर्थ डे पे फैमिली और कपल्स का है। और एवरी डे गोल्ड का प्राइस दे रहे हैं अलकरम ज्वेलर्स वाले जो हमारे स्पॉन्सर हैं इनाम घर ईद फेस्टिवल के।
2: तो
3: जो जनरल पब्लिक है उनको भी बहुत मजा आने वाला है और इस दफा नया रंग जमेगा इंशाल्लाह कैपिटल बैंकवेट हॉल में।
2: ऑलराइट जनाब, नंबर नोट कीजिए 416-710-6777, 416-710-6777 पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच श्याम भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात होती है
3: इंशाल्लाह। थैंक यू।
2: और जनाब अलकरम ज्वेलर्स की तरफ से गोल्ड का प्राइस आपके लिए दिया जाएगा और केयर इंश्योरेंस की तरफ से भी स्पॉन्सरशिप है और भी बहुत से स्पॉन्सर्स हैं, उनके भी इंशाल्लाह डिटेल आपको बताएंगे। और ऐसा करते हैं कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे, फिर आपको पाकिस्तान लिए चलेंगे। दो तीन छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है। लीजर्स कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस سیل آپ اس ویکینڈ پہ تشریف لے جائیے 135 کامرس فیری ڈرائیو ایسٹ مارکھم میں, اور اپ ٹو 80% سیونگ آپ کو ہو سکتی ہے, اور پروفیشنل آپ کو ہیئر کٹ پروڈکٹس, ہیلتھ اینڈ بیوٹی پروڈکٹس, کاسمیٹکس اینڈ اسکن ٹریٹمنٹ پروڈکٹس, برانڈ نیم پرفیومز ملیں گے فری. اس کے علاوہ ڈیزائنر سن گلاسز ہیں, فائن چاکلیٹ آپ کو ملے گی, اور مدرس ڈے کے لیے اسپیشل گفٹ ملیں گے. 135 کامرس ویلی ڈرائیو ایسٹ مارکھم یا لیزاز کاسمیٹکس .com پہ جا کے آپ مزید انفارمیشن جو ہے اس حوالے سے لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین ہے, آپ ویکینڈ پہ تشریف لے جائیے. آپ پی سی کے یہاں پہ جو شیف ہیں جن کا 14 سال کا تجربہ ہے اور بہت ہی ریزنیبل پرائسز ہیں. یونٹ ان کا 3 ہے, 3920 گلنٹن ایونی ویسٹ, یونٹ 30 رج وے پلازا میں ہے. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, پاکستانی سٹائل کے چائنیز کھانے آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں. جناب ایک کمرشل بریک, اور اس کے بعد آپ لے چلیں گے پاکستان جہاں ہمارے ساتھ ہوں گے بلال زمان صاحب. اسٹے ٹیون.
1: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنانشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 6472714147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین

0: यहाँ पे जो है ना स्किल्ड वर्कर्स जो है, एक तो मजदूर तबका है ना, लेकिन जिनके पास स्किल्स हैं माशाल्लाह, वो तो मतलब एक महीने का 2-3 लाख रुपया जो है वो कमाना उनके लिए कोई इतनी बड़ी
1: मुश्किल
0: बात
1: है।
0: नहीं है।
1: सही। अच्छा, ईरान जंग के खात्मे के लिए नई तरकीब सामने आई है। ट्रंप का अख्तियार ईरान से और जंग करनी है या नहीं, फैसला अमरीकी कांग्रेस करेगी। अमरीकी सेक्रेटरी ने ईरान जंग को पहले ही ख़त्म करार दे दिया है, तो क्या जंग का इख्तियार अमरीकी कांग्रेस के पास जाने से अमरीका को ईरान से निकलने का मौका मिल जाएगा? वैसे सदर ट्रंप तो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, मेरा इख्तियार है।
0: जी देखें, बिल्कुल वो तो अपना बहुत कुछ जो है ना वो मानते हैं, लेकिन बहरहाल जो अमेरिकी कानून है वो तो यही कहता है कि अब उनको जो है वो 60 दिन के अंदर अंदर इजाजत लेनी होती है, चाहे जाए कि वो
1: कांग्रेस
0: खुद कोई, हाँ जी, चाहे जाए कि वो खुद जो है ना वो कोई
1: फैसला
0: और
1: करें।
0: कानून पास करने की कोशिश करें, लेकिन अभी जो है ना फिलहाल की सिचुएशन के मुताबिक तो उनको एक रास्ता जो है वे आउट मिल रहा है। खुद भी बहुत सारे जराए जो है वो इस बात का दावा कर रहे हैं, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि जितनी मुजाकरात की बात हो रही है, जितना जो है ना वो जिक्र हो रहा है कि जी आ जाए, बात कर लें, फोन कर लें, हम तैयार हैं, बैकडोर रबते हो रहे हैं, जो है ना वो चैनल खुला हुआ है, अभी एक दोबारा जो है वो तजवीज भी पाकिस्तान के जरिए जो है वो अमरीका को भिजवाई गई है। तो बहुत सारी जो है ना वो मतलब लोगों का ख्याल है कि अमेरिका खुद भी जो है ना इसमें से अब निकलना चाहता है, और उन्होंने अपने लोगों को वहां पे भी जो है ना जितने उनके सेनेटर्स हैं और आवाम के अंदर भी वहां पे जो बेचैनी पाई जाती है, वहां पे भी प्राइसेस बड़ी जो है ना वो ऊपर गई हैं, और भी ऊपर जाने की जो है ना वहां पे है, तो वहां पे आपको पता है कि वो तो हमारी तरह नहीं है, वहां पर तो जैसी जो है ना थोड़ी सी भी महंगाई होती है तो वो बिल्कुल जो है ना वो लोग सवाल पूछते हैं कि जी क्या जरूरत थी आपको जो है ना वो ऐसी जंग के अंदर अपना हिस्सा डालने की जिसमें आपका कोई लेना देना जो है ना उसके अंदर नहीं था। तो वो
1: ठीक।
0: बाहर एक प्रेशर वो भी जो है ना वो अमरीकी आवाम का जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, जिस वजह से वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इस जंग से जो है ना वो जल्द अज जल्द जो है ना वो निकले। तो
1: ठीक।
0: बहरहाल एक रास्ता जो है उनको जरूर मिला है, जिसके तहत वो कह सकते हैं कि नहीं मैं तो जंग मजीद करना चाहता था, लेकिन अब मुझे कांग्रेस ने जो है ना वो इजाजत नहीं
1: इजाजत
0: दी,
1: नहीं दी।
0: तो इसलिए जो है
1: ठीक।
0: ना वो हम वायदा करने जा रहे हैं।
1: आप सुन रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। हमारे स्टूडियोज में रबते के नंबर 416-593-0003। पाकिस्तान से बिलाल जमान सब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में आपकी लाइव कॉल लेंगे। इमरान खान साहब की नाहक कैद को 1,000 दिन मुकम्मल हो गए हैं। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकबर राजा ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर योम मजदूर रैली से आज खिताब भी किया है। सवाल उनकी तरफ से या हमारी तरफ से या लोगों की तरफ से कि क्या अगले इलेक्शन तक जेल ही अब इमरान खान साहब का मुकद्दर है, और क्या इस हवाले से कोई गैर तहरीरी माहिदा पहले ही पीटीआई क्यादत कर तो नहीं चुकी है बिलाल साहब?
0: ये देखें, जो जाहरी हालात है ना वो कुछ इसी तरह की पिक्चर पेंट करते हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब जो है वो कोई मतलब उनके इलम में ये बात है, लेकिन बाहर जो लोग हैं जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं, सुहेल अफरीदी हैं, ये लोग आए तो बड़े एंथुजियज्म के साथ थे। आपको याद होगा कि जब अली मीन गंडापुर को
1: हाँ,
0: हटाया गया
1: हटाया था
0: था
1: जी, बिल्कुल सही है।
0: तो लगता था कि अब तो बस मतलब ये कि देखें 2024 नवंबर की तारीख थी जब ये लास्ट जो एहतजाज था, एक बड़ा एहतजाज पीटीआई की तरफ से सामने आया था, उसके बाद तो कोई बड़े जलसे भी जो है वो पीटीआई की तरफ से सामने नहीं आए। केपीके के अंदर कहीं पे वो ऐसा कोई बड़ा क्राउड जो है वो नहीं इकट्ठा कर सके जिसको आप सेलिब्रेट कर सकें। फिर उन्होंने एक वो इमरान खान की रिहाई की फोर्स बनानी थी, उसका जो है ना मतलब क्या उसकी रजिस्ट्रेशन हुई, किसने करवाई, कितने बंदे उसके अंदर रजिस्टर हुए, तो जमा कहते हैं ना जुबानी जमा खर्च जो है वो सिर्फ नजर आता है क्यादत की तरफ से। और अब पीटीआई की अपनी जो मतलब जो आप कह लें कि कुछ लोग जो इमरान खान साहब के बड़े करीब थे वो अब जो है ना वो सवाल ये उठा रहे हैं कि आया जो क्यादत बाहर मौजूद है, जिस तरह के सुहेल अफरीदी हैं और दूसरे लोग हैं, ये चाहते भी हैं कोई तहरीक जो है ना वो रन करना या नहीं जो है ना वो चाहते। अलीमा खान की तरफ से भी हमने जो है ना वो देखा है कि सिर्फ बयान की हद तक, लोगों को कॉल करने की हद तक जो है वो मामला है, लेकिन कोई इतना सीरियस जो है ना वो देखें 1,000 साल का मतलब 1,000 दिन का मतलब है कि 3 साल से ऊपर जो है वो खान साहब को जो है ना वो हो गए हैं जेल जेल के अंदर, तो एक बड़ा जो है ना वो टाइम पीरियड
1: होता है
0: है।
1: बिल्कुल
0: 4 साल बाद तो वैसी हुकूमत जो है ना वो अपना टाइम
1: इलेक्शन
0: पीरियड जो है ना वो
1: पूरा
0: पूरा
1: बिल्कुल
0: पूरा
1: ठीक।
0: कर लेती है,
1: अच्छा, अभी
0: तो लगता
1: तय
0: है कि कोई कोई इस तरह का फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी तय है
1: किया हुआ है।
0: कि
1: ठीक,
0: इस इलेक्शन तक जो है ना वो खान साहब
1: उनको अंदर ही
0: बाहर नहीं
1: रखना है।
0: आएंगे।
1: ठीक। अच्छा, अभी सोहेल अफरीदी साहब की बात की आपने, वो कहते हैं सूबे को इसके हक की गैस ना मिली तो आवाम के साथ मिलकर एहतजाज करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा गैस पैदा करने वाला सूबा होने के बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है। क्या सूरत ओवरऑल कैसी है? क्या ओवरऑल गैस की केपी में लोड शेडिंग बाकी जगहों से ज्यादा हो रही है?
0: जी देखें, जो इस वक्त गैस की लोड शेडिंग है वो तकरीबन हमने सर्दियों के महीनों में देखा था कि जब गैस की जरूरत ज्यादा होती है, गर्मियों के अंदर हुकूमत की पहली प्रायोरिटी जो है वो इंडस्ट्रीज होती है, और ये हुकूमत पहले ही वाजे कर देती है कि जब सर्दियां आती हैं, क्योंकि सर्दियों के अंदर

0: खपत भी ज्यादा होती है, और हमारे यहाँ पे सर्दी भी दो दो महीने तो बहुत ज्यादा पड़ती है। तो उसमें हुकूमत की कोशिश होती है कि लोगों को कम से कम गीजर के लिए और इलेक्ट्रिक हीटर के लिए, मैं खुद मतलब कि जितनी देर भी हम लोग सर्दियों में कोई ऐसी तंगी नहीं थी, लेकिन
1: ठीक
0: गर्मियों के आते ही जैसे ही यूजेज कम हुआ है कि अब सिर्फ चूल्हे जलाने हैं आपने, और तो कोई आपका और तो कोई मतलब यूज ही नहीं है, तो अब वो चूल्हे जलाने के लिए भी जो है ना सारा दिन जो है ना वो गैस अवेलेबल नहीं होती, तो वो आपको हैरत होती है कि कहाँ इतनी गैस जो है ना वो चलेगी। लेकिन बहरहाल हुकूमत जो है वो इंडस्ट्री को जो है ना वो प्रायोरिटी देती है, तो जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसके साथ जो घरेलू एरियाज जो है ना वो लगते हैं, वहाँ पे सारा सारा दिन भी अवेलेबल है।
1: सही।
0: उसके अलावा जो बाकी मार्केट के जो एरियाज हैं वहाँ पे जो क्या कहते हैं अपना हुकूमत की प्रायोरिटी होती है कि लोग सिलेंडर वगैरह जो है ना कमर्शियल
1: इस्तेमाल
0: सिलेंडर्स
1: कर
0: वगैरह
1: लें।
0: यूज करें, तो वहां पे जो है ना वो लोड शेडिंग ज्यादा की जाती है, और नॉर्मल एरियाज के अंदर जो है ना वो नॉर्मल जो हुकूमत की एक
1: सही।
0: रूटीन है सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक, और फिर जो है ना वो 12 बजे से लेके 2 बजे तक, और फिर
1: सही
0: शाम 5 बजे से लेके 9 बजे तक, ये टाइमिंग
1: ठीक
0: है। इस टाइमिंग के अंदर जो है ना वो गैस
1: नहीं
0: अवेलेबल
1: होते।
0: होती है।
1: अच्छा, वफाकी वजीर तवने अवैस लगारी कहते हैं गुज़श्ता रोज़ हमें एलएनजी गैस मौसूल हो चुकी है, बिजली की लोड शेडिंग का वो कहते हैं मुकम्मल खात्मा हो गया है। हुकूमत ने लोड मैनेजमेंट को अवामी रिलीफ मैनेजमेंट का नाम भी दिया था, तो क्या इस बार हुकूमतें अवाम को बिजली के बिलों में भी रिलीफ देंगी लगता है आपको?
0: जी देखिए, पिछले साल जब ये नई पीटीएम की हुकूमत आई थी, तो मरियम नवाज ने भी जो है वो वजीर आला बनते ही एक अच्छे रिलीफ का जो है ना वो ऐलान किया था। और जरूरत होती है जब गर्मियों का महीना आता है, तो आपको पता है कि लोड जो है वो बढ़ जाता है, ना चाहते हुए भी पंखे लाइटें और ये मतलब ये कूलर
1: चलते हैं।
0: वगैरह ये चीजें जो है ना वो चलती हैं। तो जो आपका जो कंज्यूमर होता है, जो अपने कोशिश करता है कि उसका बिल 100 यूनिट से 200 यूनिट से कम रहे, वो भी जो है ना वो ना चाहते हुए उसको उससे जंप जो है ना वो करना पड़ता है, उससे बाहर निकलना पड़ता है, और उससे आपका जो बिल है वो एक्सपोनेंशियली जो है ना वो आपका वो ज्यादा आता है। तो अब
1: ठीक।
0: हुकूमत जो सोलर की नई पॉलिसी लेकर आया है वो भी बड़ी अजीब है कि एक तरफ जो है वो सोलर सार्फीन जो है वो आपको 4,000 मेगावाट जो है वो बिजली मुफ्त और सस्ती जो है ना वो पैदा करके दे रहे हैं, लेकिन उसका भी सारा बोझ जो है वो अपने सार्फीन के ऊपर जो है ना वो डाला हुआ है कि वो जो आपको 4,000 मेगावाट मिल रहा है वो आप 13 रुपए यूनिट में उनसे खरीद रहे हैं, और आगे आवाम
1: ठीक,
0: को वही जो यूनिट्स हैं वो 40 40 रुपए
1: चालीस
0: में जो है ना वो
1: ठीक,
0: दे रहे हैं। तो अगर कम से कम जो है ना वो आप इतनी कमाई जो है वो लोग वो वहां से कर रहे हैं, तो
1: सही,
0: उसके जरिए जो है वो आवाम को कोई ना कोई रिलीफ
1: कुछ
0: जो
1: ना
0: है
1: कुछ
0: वो
1: होना
0: जरूर मिलना
1: चाहिए।
0: चाहिए।
1: चलें और चलें, कॉल्स की तरफ चलेंगे जनाब। स्टूडेंट्स में रबते के नंबर 416-593-0003, फर्स्ट कॉलर है 6910, आप ऑन एयर सर। 6910, 6910 आप ऑन एयर सर, बात कीजिए।
2: वालेकुम भट्टा साहब,
1: जी वालेकुम सलाम।
2: बट बहरहाल है ये कि दिन ब दिन गैस के प्राइसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये तो बड़ी एक अजीब सी तजर्बा किया गया है पूरी दुनिया में, खैर ये पहली दफा नहीं हो रहा, हम तो खैर इससे हो संभाल है। ये हमेशा रिपब्लिकन जब भी बैठते हैं कोई ना कोई नई गेंद छेड़ते हैं, इनकी एक हिस्ट्री है। तो और उसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब मुल्कों को होता बहुत है, ये कि लगता है ये गुर्बत की जगह गरीब खत्म करने के चक्कर में लगे रहते हैं नए नए। हालांकि पोप ने भी बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि यानी कि बिगाड़ने में तो सेकंड लगते हैं लेकिन बनाने में कई
1: टाइम
2: साल लग
1: लगता है।
2: जाते हैं,
1: ठीक।
2: लेकिन अल्लाह ताला इन लोगों को भी हिदायत दे जो कि इस टाइप के लोग हैं। और पाकिस्तान के हवाले से तो फिर वही है कि हाँ कुछ बेहतरी नजर आई थी, लेकिन अब है ये कि जब तक ये जंग के आसार खत्म नहीं होंगे, और अल्लाह करे पाकिस्तान कम से कम इसमें अपना एक फायदा तलाश कर ले, एटलीस्ट के
1: ठीक
2: जो इन्होंने ईरान से राहदारी खोलने की कोशिश की है, तो ये एक अच्छा है कि कम से कम पाकिस्तान को अमेरिका से ये तो तवक्को करनी चाहिए कि भाई ठीक है आपको लड़ना लड़ते रहे, लेकिन हमारे लिए ये
1: सही
2: फ्री हैंड दे दे कि हम कम से कम ईरान से अपने तेल की सप्लाई और गैस की सप्लाई ले लें। तो मैं समझता हूँ
1: सही।
2: शायद अभी जो लग रहा है कि फिलहाल जो गैस इतनी पेट्रोल इतना महंगा हुआ है लेकिन पाकिस्तान में उस जैसी कीमतें नहीं पड़ी, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में भी बढ़ने के बड़े चांसेस हो गए खबरों में आया था, और
1: ठीक है
2: पूरी दुनिया ही यानी कि यहाँ तो खैर
1: सर।
2: जो हो ही रहा है गैस की प्राइसेस, और
1: सही
2: इवन अमेरिका का भी यानी कि
1: जी,
2: खबरें
1: हम
2: आई
1: वहाँ
2: हैं
1: भी
2: कि
1: कुछ पढ़ रहे
2: सिक्स
1: हैं।
2: डॉलर पर गैलन, तो ये तो बहुत
1: बिल्कुल
2: बड़ा
1: ठीक।
2: यानी
1: ऑलराइट,
2: कि वो है।
1: थैंक यू
2: तो
1: सर,
2: बहरहाल
1: बहुत
2: अल्लाह
1: शुक्रिया।
2: ताला जो है बेहतर
1: ठीक, थैंक यू। 7997 सर आप ऑन एयर हैं। 7997
2: कैसे हैं आप? ठीक
1: जी,
2: है,
1: शुक्रिया सर, थैंक यू।
2: मैं एक दो बात पूछना चाहूंगा आज। एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सालिसी का सालिस जो होता है, जो मेडिएटर होता
1: जी
2: है,
1: जी
2: वो इंसान होता है या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी अपनी दोनों तरफ बड़ी ग्रिप होती है, वो दोनों को समझाती है कि भाई ये नहीं ऐसे करना है, और किसी डिसीजन पे लाती है।
1: जी
3: तो एक तो सालिसी होता है और एक होता है वो मैसेंजर होता है कि इधर का मैसेज पकड़ा उसको पहुंचा दिया, उसका मैसेज पकड़ा इधर पहुंचा दिया। मेरा सवाल ये है कि हमने काफी, हम बहुत दफा पाकिस्तान में लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती है गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से। अभी ये 10-15 दिन या 20 दिन जितने भी दिन इस्लामाबाद बंद रहा है, ये तो वो कंट्री वाले ही जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। बाकी जो ये गैस वैस का जो मामला है, अभी जो बता रहे हैं कि 15 या 13 डॉलर का ये रुपए का लेते हैं और 40 रुपए का देते हैं, तो क्या ये स्टेट पब्लिक के लिए, क्योंकि अभी ये मजदूरों का दिन मनाने लगे हैं ये, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने मुल्क में इंसाफ और अपने मुल्क में अपने लोगों के लिए ईमानदार उनके साथ नहीं है, तो आप बाहर जाके लोगों की नेगोशिएशनें कराते फिर रहे हो, पहले अपने मुल्क को तो ठीक कर लो। एक तो बात ये थी। दूसरी आखिरी बात में जो कहना चाहूंगा कि जो भी लोग हैं इसमें, ये जो अभी जो भी कंट्री में जो कुछ हो रहा है, इसका जिम्मेदार पॉलिटिकल गवर्नमेंट है या फौज है? अगर कुछ नहीं होता प्रॉब्लम सही ठीक नहीं होता, ये मैंने सवाल पूछा है, मैंने जवाब दे दिया।
1: किसी को वो एक मुनीर नियाजी का शेर है, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे जवाब क्या देते। 5794 सर आप ऑन एयर हैं। 5794
2: अस्सलाम वालेकुम जनाब। बट्टी साहब ये देखें, जब तक ये जंग लगी है ना, इसमें मसाइल तो होंगे और इन मसाइल में अल्टीमेटली मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भाई उनको रिलीफ देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की भी कुछ मजबूरियां हैं, IMF भी है, और इससे सबसे बड़ी बात जो है, देखिए पाकिस्तान के कम से कम कहने पे चले सीज फायर तो हुआ है ना भट्टी साहब, ये तो दुनिया तस्लीम कर दी है ना कि चले सालसी, अब ये सालसी देखिए, शायद ईरान को तो हम मना ले, अब अमेरिका को मनाना तो बड़ी मुश्किल बात है। तो बात वही होगी जो आपस में मिल बैठ के इन लोगों ने अपनी शरायत तय करनी है, और पाकिस्तान का मसला है कि वो हमेशा इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी और हमायती करेगा ईरान की। तो बाकी रह गई बात भट्टी साहब, इसमें हम ये कभी भी नहीं कहते कि जनाब पाकिस्तानी गवर्नमेंट लोगों के साथ, लेकिन अब यहाँ देख ले, अब यहाँ नहीं, कल भी आपने बताया तकरीबन 400 रुपए के मुतरादफ हमारा भी पेट्रोल हो गया, अब हमारा क्रूड ऑयल भी है, हमें क्या गवर्नमेंट कैनेडा ने दिया है? कुछ नहीं। ये देखे ये सरमायादार जागीरदार, इनका नुकता नजर और इनका लूटने का वारदात तरीका एक ही होता है। बाकी रह गई भट्टी साहब, हाँ साहब ने तमाम पते अपने जो है ना वो इस्तेमाल कर लिए हुए हैं, अब एक ही बात है, अब वो भीख मांग रहे हैं अदालत से, यार कभी मुझे जमानत दे दे, मैं थोड़ी की देर के लिए बाहर आ जाऊं। भट्टी साहब कब से मैं कह रहा हूं, पॉलिटिशियन वही होता है जो अपने आप को बचाता है, अपनी पार्टी को बचाता है। नवाज शरीफ आपके सामने मिसाल है, 3 दफा क्या उसके साथ इससे ज्यादा नहीं ज्यादती की गई? यार जिस वक्त 2 रुपए की रोटी और 5 रुपए का जनाब आपको मुख्य चीजें मिल रही थी, 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए आपको चीनी मिल रही थी, उसके साथ मुल्क के साथ बगाड़ किया गया ना, और जिन लोगों ने किया आज वो उसी पे परेशान है और पशेमान है। तो इसलिए सियासत करनी चाहिए मुल्क के खिलाफ, जो लोगों का इंडिया हो जाए, इसराइल हो जाए या अफगानिस्तान, जो उनका नुकता नजर है उससे हट के सियासत करें, सियासत में वापस आए और अपने आप को बचाएं, अपने फॉलोअर्स को बचाएं।
1: ठीक सर, थैंक यू,
2: इस तरह ना करें।
1: थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 5415 सर आप ऑन एयर हैं। 5415 वालेकुम सलाम सर जी। वालेकुम सलाम जनाब, मैं आप डिस्कनेक्ट हो गया, चॉइस साहब आप डिस्कनेक्ट हो गए, दोबारा कॉल कर लें। अच्छा हमारे पास 3-0010 आप बात करना चाहेंगे? 0010 लास्ट 4 डिजिट 0010
4: सर, मेरा आपके सामीन से और आपसे ये सवाल है और बिलाल साहब से कि सब लोग कहते हैं कि लोड शेडिंग होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन IPP के मालिक कौन है? कभी आपके किसी सामीन ने ही बताया
1: है सर? बताया तो वो सारे वही बड़े लोग ही हैं सर, IPP के मालकान भी,
4: उनके नाम बड़े के नाम तो पता लगने चाहिए ना,
1: आपके जिम्मे लगाते हैं सर कि वो उनके नाम बताएं। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 6141 सर आप ऑन एयर हैं। 6141 अच्छा, 5415 वापस आ गए सर, आप बात कीजिए। 5415 आज जरा जल्दी कीजिएगा, टाइम थोड़ा कम है मेरे पास। 5415
5: मैं सिर्फ दो बातें करूंगा।
1: जी जी,
5: पहली बात तो ये है कि हमारी तरह उन मुल्कों में गवर्नमेंटों पर प्रेशर होता है। बट्टी साहब आप मुझे बताएं कि कनाडा में कितने महंगाई के खिलाफ जुलूस निकले हैं, कितने मदारे हुए हैं, आप मुझे बताएं अमेरिका में कितने मदारे हो रहे हैं, लोग कितने सड़कों पर बैठे हुए हैं दिन रात। और डोनाल्ड ट्रंप तो वो बंदा है जिसकी उम्र 87 ईयर है और उसने अगला इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता वो, उस पर क्या आवामी सोशल मीडिया का दबाव होगा भाई।
1: ठीक
5: यार, ये बातें मैं कहता हूँ ना, जब मैं भट्टी साहब कहता हूँ कि नियत का फतूर है, तो फिर ये नियत का फतूर इन चीजों से नजर आता है कि बंदे का हर वक्त अपने आप को अपने सर में जो मट्टी डालने वाले हालत है ना, इन लोगों को इस चीज से निकलना चाहिए। और एक बात भट्टी साहब, एक बात मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात करके खत्म कर रहा हूँ बात। भट्टी साहब देखें, या तो आप किया करें तबसरा, मतलब तबसरा रोज वही बात, आप एक पार्टी बन के जब बैठ जाते हैं ना तो फिर हमें भी जवाब देना पड़ता है, हम मजबूर होते हैं, हमें और बात करनी पड़ती है। मैं आज आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आप तबसरा करें, हम आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे।
1: मुझे कह रहे हैं,
5: और आपका भी कद बड़ा होगा।
1: मुझे कह रहे हैं, किसी को कह रहे हैं
5: नहीं, आज जो तबसरा करते हैं भाई, आप सवाल करते हैं।
1: ठीक है, थैंक यू। 8156 आप ऑन ले रहे हैं, 8156।
6: हेलो
1: जी जी, आप बात जल्दी बात कीजिए।
6: देखिए आईपीपी का तो सबको पता है किसके हैं, 52% तो गवर्नमेंट के अपने, 28% सरमाएदारों के पाकिस्तानी, बाकी 8% चाइना के, 7% को गल्फ के लोगों के, कुछ और तो वो तो है, नाम भी सबको पता है, मियां मंशा के चार हैं,
1: अच्छा
6: शहबाज शरीफ के लड़के सलमान, शहबाज का भी एक है।
1: चलिए अच्छा किया सर, आज आपने बता दिया। ठीक है सर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।
6: जांगी
1: तरीन भी, अच्छा ठीक है, हो गया। ठीक है सर जी, आज टाइम थोड़ा कम है, मैं इधर बाकी कॉल दे। 6141 सर आप ऑन ले रहे हैं, 6141।
7: अस्सलाम वालेकुम भाई साहब।
1: जी वाले सलाम सर।
7: भाई साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े जब हुकूमत में आए थे ना, ऊपर से फ्लड आ गया, फिर जंगे आ गई, फिर एक बाजू में जंग, फिर दूसरे बाजू में जंग। देखें, दुनिया भी जानती है कि ये पाकिस्तान अगर आज बांध के कुटाई करता है ना, तो अगर इसे एनर्जी सस्ती मिल गई तो इसे संभालेगा कौन? तो अपनी हुकूमत पे ट्रस्ट करना चाहिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: ठीक, थैंक यू। 9558 आप बात करना चाहेंगे? 9558। अच्छा चलिए, आप सुन रहे हैं बिलास साहब। मैंने बरसबीले तस्करा जो है वो उनका मुनीर नियाजी का शेर कह दिया था, तो भाई के सवालों के जवाब देना चाहेंगे आप?
0: नहीं नहीं, वो तो जो है ना, क्या कहते हैं, अपना सवालों के जवाब अपनी जगह पे, लेकिन बहरहाल हमारा बहुत सारे मामलों के अंदर जो तजिया होता है, देखें जब आप ग्राउंड रियलिटीज़ को जो है ना वो देखते हैं ना, अभी भाई ने बात की महंगाई की और एहतजाज करने की, देखें एक जो है ना वो लेवल होता है, उसको आप क्या कह लें कि जब पानी जो है ना वो सर से जो है ना वो गुजर जाता है।
1: ठीक,
0: तो अभी जो है ना वो देखेंगे वो स्टेज जो है ना वो ठीक है कि हम हुकूमत की भी जो है ना वो सपोर्ट अपनी जगह पे होती है, लेकिन जब आप देखते हैं कि हुकूमत अपनी अयाशियां जो अपने मामला हैं उनको जो है ना वो नहीं कवर करती और सारा का सारा बोझ जो है सिर्फ आवाम के ऊपर ही डाल देती है, तो फिर जो है ना वो बहरहाल एक जो है ना सवाल जो है ना वो
1: और। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वीकेंड है, आप भी 2 दिन रेस्ट कीजिए, मंडे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
0: जरूर, थैंक यू।
1: एंड लिसनर्स, आपकी कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इजाजत चाहेंगे, दुआओं में रखिएगा याद, हौसला निहारना, बल हौसला भी खोने की चीज़ इन, ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशर्ते जिंदगी। इंशाल्लाह मंडे शाम 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। वीकेंड है, बच्चों को वक्त दीजिएगा, उन्हें आपके वक्त की जरूरत है। स्टूडियो इंजीनियर मरियम पर मेज़बान अशरफ भट्टी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्दे माला।